0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो एरी एफएम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाट
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 में 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro में 6000 mAh पावरफुल बैटरी के साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: सबैको मन सुने
2: रेडियो भेरी FM।

अंगे को डाली आतमल्यूला कलम कापी लेखुला भनेरा ते सही तनुगे को डाली ए मूल बाटो कोरी बसे।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी